0: ओ मेरो फुलीवारी, अब के छ त भित्र?
1: के विचार? को फुलीवारी? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली हो तिमी, त अनि मेरो फुलीवारी।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

नमे सब जा नमे जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा मगर फिर भी न जाने क्यों

टन्सी राम्रो बस्छ है, माया नमार ल, म चाँडै लिन आउँछु नि ल तिमीलाई।

0: count open, activate any carobar, stacile sanga. Easy life easy, banal day harek din. Global Smart Plus, life ko pesma banking.
1: Hari sir. म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1
2: रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो रमाइलो गीत.

0: web surfer of a Karkarna fast internet.
1: Classic Tech को Wi-Fi 6 router, नाम एक घाम अनेक, शक्तिशाली 4 एंटीना में wide coverage, 5G strength, low latency, raw fast speed, सभी अस्त्र को शक्ति बोकी को, 200 Mbps को internet, अब 3 महीना कलागी मात्र 3300 रुपया मा, साथ मा IPTV मात्र 250 प्रति महीना, booking को लागी 9801004477, शर्तहरू लागू हुनेछन्, Classic Tech, छोयो कि चल्यो.

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम शक्तिशाली 4 एंटेना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेन लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सब अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो NRN 99.1 सबैका लागि सूचना
3: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो NRN 99.1 मा यो हो फिल्मी मेलोडी।